0: मुख्तार जी, कहानी अभी ख़त्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है, तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं, और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: बिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

भरी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सुन। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। रेडियो SBS का वेबसाइट radiosbs.nl। आज का भजन यात्रा का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। भजन यात्रा का प्रोग्राम जो हर सुबह आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। हम आपको ले चलते हैं भजन यात्रा प्रोग्राम में पहला भजन की ओर जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। भजन का बोल है सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सियू का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। मंगलवार का दिन है, भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है, अनहेल खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो पेश किया जा रहा है एक सुंदर सा भजन होगा पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में।

शर्मा जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। मंगलवार का दिन है तो चले प्रोग्राम में आपको हम ले चलते हैं ये सुंदर सा भजन की ओर।

और सुंदर सा भजन अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए radio.sbs.nl के जरिए और दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर सा भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं, देश विदेश में भी हमारे बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम को भी सुनते हैं, आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। अगला भजन जो प्रोग्राम में होगा सोनू निगम की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और वो भी हरि हरन की आवाज में।

हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए हरिहरन की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ भजन यात्रा प्रोग्राम जो है समाप्त किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर सा श्री हनुमान जी की आरती बस पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए अब की बार उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म बाजी का गीत पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL और उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। जुबिन और नीति मोहन प्रोग्राम में

0: सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। चले आपके बार ये गाना की ओर, आपको हम ले चलते हैं। भूमि फिल्म का नाम है।
1: तारीफों के पुल बांध रहे हैं, होने वाले मियां के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है, खुले सांड खड़े हैं, ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं, दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

एम जूनिता गांधी की आवाज में ये गाना पेश की गई अर्ध फिल्म भूमि SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन लाइव शहरी तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अभी बार फिल्म बागी, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा

चलिए फिल्म बार बार देखो, अरमान मलिक और नीति मोहन प्रोग्राम में। सौ आसमान गाना का बोल है आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में जुबिन एंड पलक की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है, इश्क फॉरएवर फिल्म का नाम।

इस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आतिफ असलम की आवाज में जो अब की बार पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुनने वालों, 9:00 प्रोग्राम में 3 मिनट वेटेड हो चुका है। आज मंगलवार का दिन है, 25 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, धूप ही धूप का मौसम है, तो आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले हैं। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। टेम्स ड्राइव 237 से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर हम आपको ले चलते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले 9:04 जबकि वैठी हो चुका है, पहला गाना की ओर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई पत्थर की सनम फिल्म का नाम, मनोज कुमार का खास एक्टिंग किया हुआ गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना। पुरानी नगमे आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश के बाद किशोर कुमार प्रोग्राम में।

पेश की गई आप सभी सुनवालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले हेमंत कुमार एन लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनवाओ की सेवा में। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आज की इस प्रोग्राम में। एक काफी पुरानी

रेडियो SBS के जरिए ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना शहरी उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कुमार किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले प्रोग्राम में।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई। 100 बरस की जिंदगी से गाना कबूल और इसी तरह से मोहम्मद रफी और आशा की आवाज में गाना पेश की गई। चले प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की ओर। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम सच्चा।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था सच्चा झूठा। किशोर कुमार की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना महेंद्र कपूर के आवाज में पेश किया जा रहा है आज के इस प्रोग्राम में। जब भी पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, तो हम आपको ले चलते हैं महेंद्र कपूर की ओर।

महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में मुकेश के आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम संगम फिल्म का गीत आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

0: की बहार।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में प्रसून मुखर्जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है फिल्म।

प्रसून मुखर्जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म 20 साल बाद उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश की गए, खासतौर 1950 का फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम निराला, उसी फिल्म से अभी आपने ये खूबसूरत गाना सुना लता जी की आवाज में। चले किशोर कुमार की ओर और अब की बार श्री रामचंद्र का संगीत पर ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही तो है वो
2: इना बिना डिका
3: किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में श्री रामचंद्र का संगीत पर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार के बाद चलेगा आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

1961 का फिल्म, फिल्म का नाम घराना, उसी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11, इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले किशोर एन लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों बस रोजाना मोबाइल फोन टैबलेट के जरिए बस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से किशोर कुमार की ओर, साथ में होगा आपकी बार आशा भोसले और फिल्म का नाम जाग उठा इंसान। किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया।

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम जाग उठा इंसान। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

योगी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। महेंद्र कपूर और लता के बाद हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर, और गाना का बोल है सांसों में कभी। रेडियो एसबीएस का

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार फिल्म दारिंदा, उसी फिल्म का गीत प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में नीरज श्रीधर और श्रेया जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना कुमार सानू और साधना सरगम प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रय उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना और कुमार सानू जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है,

और रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे सभी सुनने वालों जो खास तौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले हम आपको ले चलते हैं एक गाना हरिहरन एन कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03322 66 66 11।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सरो मीठे की गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं।

अदनान सामी और श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: रेडियो वेस्ट इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों में थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एडो फिल्म हमको तुमसे प्यार है उसी ये फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक बार फिर से उदित नारायण प्रोग्राम में हमारा फिल्म का नाम
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। उदित नारायण की आवाज में आई फिल्म हबरास उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। चले कुमार सानू और अलका जे की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

uit de film Kya Kehna. Alka Yagnik en Sonu Nigam ki awaaz mein ye gana bas program mein pesh ki gaye. Aap sabhi aur sabhi sunne walon ki seva mein aasra umeed hai ki gana aap sabhi ne suna aur behad pasand kiya hai. चले सोनू निगम और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए तो फिल्म क्यों हो गया ना, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए जेम्स की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है।

गुलाम अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। ऐड फिल्म बेवफा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की

शुक्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

पास में अभी आपने सुना खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें भी होते हैं, मौसमी समाचार और अपना दाह होरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र के लिए जरूर आप उसी वेबसाइट पर जाइए।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और

रेडियो SBS की सीरीज ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार एक गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं उदित नारायण की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है। उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और देखा जाए अलका याग्निक भी होगा।

0: Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद चले आज के ये प्रोग्राम में तलत जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म का

द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में फिल्म पतिता का गीत पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की ओर पहचान फिल्म का गीत पेश होगा। 1970 का फिल्म, फिल्म का नाम पहचान, मुकेश और लता मंगेशकर प्रोग्राम में। और गाना का बोल है कल दिल के बाद बस आज मौका है।

फिल्म पहचान का गीत पीस की गए मुकेश और खास तौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मुकेश और लता जी की आवाज में, फिर से प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना फिल्म प्रेम कहानी, उसी फिल्म का ये गाना।

और रेडियो SBS की सरिये मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले किशोर कुमार की ओर, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम प्रेम नगर, उसी फिल्म का गीत की ओर।

ये गाना बस पीस की गई फिल्म प्रेम नगर, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुन वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। इस तार की नंबर पर हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। किशोर एनाशा

इस प्रोग्राम में पेश किए गए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में हंसरो में देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था हिम्मत, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। किशोर कुमार एन आशा भोसले प्रोग्राम में अब की बार ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों।

किशोर कुमार लता जी की आवाज में फिल्म जुगनू का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। अब की बार मुखी सौराष्ट्र जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो अपना मोबाइल फोन टैबलेट के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। मुकेश और लता मंगेशकर आपके बार प्रोग्राम में होगा।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के आवाज में फिल्म रंगोली का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में एक पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।
1: नन्ही सी जान में है जवानी का सितम।

0: क्यों?
1: हाँ भाई, फिर ये बेबसी क्यों?
2: ये इसलिए कि इश्क का इजहार किया जाए।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से आपने सुना टाइटल सॉन्ग अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में। और अब हम सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मुंबई दिल्ली की कुड़िया

चली आई चली आई इज द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ गजान दूर चित्राए के एंड द फिल्म काटे कॉम्त इश्क समंदर.

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गजोंग दो सोनू निगम ए श्रेया घोषाल वास आउट द फिल्म आजा नचले. And now the film An Evening in Paris comes with Sangha Do Sharda. Lecha, lecha, lecha, mera dil.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पोरवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं
2: राघा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड। क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: राघा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

आज रपट जाए तो हमें ना भुलाइयो इस अवध फिल्म नमक हलारन इश्क सोहंदोर किशोर कुमार एंड आशा भोसले। Uit de film Pagelpanti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Yo-Yo Honey Singh, Tumka.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।

0: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। हुसैनुद्दीन जगजीत सिंह एन अलका याचनिक हेफ्ती गोहोर्ड आउट द फिल्म तरकीब en uit de film Sare Sapne komt opnieuw gezongen door Alka Yachnik deze keer Zara Zara Si Baate Teri Mujhko Yaad Aati Hai.
1: Haseen lamhe, shareer lamhe, sharmile lamhe, jhijakte lamhe, pighalte lamhe, dhadakte lamhe, mohabbat mein guzre ye tamam lamhe, दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, क्वाम अर्द प्रातः फिल्म धड़कन फन अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी। दिल लीजिए इस गजोंग दोर नुसरत फतेह अली खान। गाँव दफेर में टेकीला अर्द फिल्म बाला।
1: बाला भैया की सुबेबा की खुशी में पेश है सोनी बैंड की खास पेशकश, सुनिए।

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज़ से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में वादिया मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

हिंदू की जवानी है फिल्म का नाम और अभिनेत्री है कियारा अडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज़ में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की। ये कभी

0: किया, झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर,
2: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है, बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे इस अर्ध फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं dit prachtig liedje is gezongen door Kumar Sanu en Anuradha Padmanabhan. Het volgende liedje is gezongen door Abhay en Shreya Ghoshal. Uit de film Panipat komt Sapna hai sach hai. Uit de film Panipat komt Sapna hai sach hai.

0: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
1: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
0: 6th of September, अनफॉरगेटेबल 90s।
1: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
0: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
3: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और अब आप सुनिए एक पहेली लीला से तुलसी कुमार की आवाज में मेरे सैया सुपरस्टार।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।